0: नमस्कार।
1: नमस्ते, आप पूजा देखने आए हैं?
0: हाँ, पहली बार देख रहा हूँ, बहुत अच्छा सजाया हुआ है।
1: ये सब कुछ मजदूर लोग करते हैं, अभी इनका प्रोग्राम शुरू होने वाला है।
0: अच्छा,
1: हाँ देखिए बहुत अच्छे नाचते हैं,
0: चलिए देखते हैं।
1: चलिए आओ दीदी। नमस्ते बाबूजी।
0: नमस्ते।
1: चुमरे फुलवा, तुम लोगों का नाच गाना कब शुरू होगा?
2: नाच कैसे होगा दीदी, वो देखो ना बाबू और मदना दारू पी के दूध पड़े हुए हैं।
3: पी सर, पी और पी।
1: देखिए इनकी हालत।
2: ढोल कौन बजाएगा?
1: अरे वाह, ढोल बजाने वाला नहीं है तो क्या नाच नहीं होगा?
2: ढोल के बिना नाच कैसे जमेगा दीदी?
0: हम कहते हैं हम कोशिश करें।
1: आप आप धुन बजाएंगे, बजा सकेंगे?
0: हाँ देखिए ना। अरे भैया जरा ढोल इधर लाना।

0: सरकार, ये लंबू साला बहुत चालू निकला, लड़कियों के बीच में कन्हैया बन के ढोल बजा रहा।
1: अबे इसे ढोल बजाना बोलते? ये तो मरीखाल पीट रहा, मरीखाल।
0: उस्ताद तुम बजा के बताओ।
1: दिखा दो।
0: हाँ?
1: रास्ता बना। फुलवारानी, इस बेसुरे लौंडे के ढोल पे क्या कमर हिला रही है? मैं ढोल बजाता हूँ, तू नाच।
2: ए फुलवारानी, अरे इससे कहते अगर ढोल बजाने का इतना ही शौक है तो आ जाए, मुझसे मुकाबला कर ले।
1: क्यों बे, हमको चुनौती देता है? मर्द का बच्चा है तो आजा मैदान में।
2: हाँ आ जाओ काली राम, हम कहते हैं जरा हम भी तो देखे कितने बड़े मर्द हो तुम।
1: ठीक है, लेकिन इतनी बात का ख्याल रखना, अगर तू हार गया ना, यही ढोल तेरे गले में बांध दूंगा और सारे बाजार में घुमा दूंगा तुझे।
2: हाँ मंजूर है, लेकिन अगर कहीं तू हार गया तो खा कसम की तू ढोल गले से नहीं उतारेगा और भागेगा नहीं यहाँ से।
1: कसम भैरों की, एक बाप की औलाद हूँ, यही रुका रहूंगा तेरे लिए। चल
2: चलो, अभी फैसला हो जाएगा किसकी औलाद हो तुम।

जय जय गाओ, शंख बजाओ, शीश झुकाओ, शीश झुकाओ। माँ माँ दुर्गा दुर्गतिनाशिनी।

नाम है शबनम। प्यार से लोग मुझे शब्बो कहते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मीना, मीना, अंजू या मंजू? मीना, मीना, अंजू, मंजू या मधु।

शहनाई बजती रही, मैं थी, तुम थी और वो शर्माओ नहीं, घबराओ नहीं, कहूंगी किसी से नहीं। जानती हो मेरा नाम है शबनम, प्यार से लोग मुझे शब्बो कहते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मीना, मीना, अंजू या मंजू? मीना, मीना, अंजू, मंजू या

0: जिसका था इंतजार वो शाहकार आ गया। आइए आइए,
1: ओले मिले,
0: मुबारक हो, मुबारक हो।
1: किस बात की?
0: लो, आज आपकी शादी की सातवीं सालगिरह है। इतना भी याद नहीं मियां?

0: मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ।
1: कोई जरूरत नहीं, अब मेरे दिल की आग आपके खुफिया शब्दों की रेत ठंडा नहीं कर सकती। दोष मेरा था जो गरीबी के पुल को पार करके अमीरी के किनारे तक पहुंचना चाहती थी। मैं नादान थी, मगर आपने इशारा कर दिया होता कि ये कोशिश मत करो, इस कोशिश का अंजाम मौत है, बर्बादी है।
0: सुमति, मेरे जख्मों में नमक न छिड़काओ।
1: छोड़ दीजिए, मुझे छूकर कहीं आपके हाथ मैले न हो जाए।
0: क्या कह रही हो तुम? तुम्हें छोड़ने से पहले दुनिया न छोड़ दूंगा।
1: अरुण बाबू, आज तक गरीबों की मोहब्बत दीवारों ही में चुनवाई गई है। आपकी दुनिया बहुत बड़ी है, मेरी दुनिया सिर्फ एक छोटा सा दिल है और वो भी टूट चुके हैं।
2: सुमति, कुछ तो ख्याल करो, इतनी रात गई है, तमाशा किसने देख लिया तो रही से इज्जत भी मट्टी में मिल जाएगी। जाओ घर जाओ। डॉक्टर साहब, आप बड़े लोग हैं, लेकिन एक तरह से मैं आपकी माँ की बराबर हूँ। इज्जत में न सही, उम्र में तो हूँ। आप अगर किसी गरीब का भला चाहते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप सुमति को भूल जाएं, और सुमति आप अपने प्यार के लिए माँ के प्यार से कुर्बानी न दीजिए। बच्चों की शादी ब्याह पर माँ बाप का अधिकार होता है, जाइए उनकी आज्ञा का पालन कीजिए। बारिश हो रही है, भीग जाओगे, माफ करना, नाम ले लीजिए। डॉक्टर साहब ठहरिए, मैं आपके लिए छाता ले आती हूँ।
0: जी नहीं, मेरी माँ ने मेरे शरीर में इतनी शक्ति दे रखी है कि ये बारिश तो क्या बड़े बड़े तूफानों को भी सह सकता है।

आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है।